0: Esta es yeseradio.org, el sonido de nuestra generación.
1: York College আপনার জন্য একটি বার্তা আছে। York College পরীক্ষা কেন্দ্র এখন ইংরেজি ভাষার দক্ষতার জন্য TOEFL পরীক্ষার ব্যবস্থাকারী এবং আপনি যদি দ্রুত কলেজ শেষ করতে চান তাহলে ক্ল্যাপে অংশগ্রহণ করুন। ক্ল্যাপ কলেজ বোর্ড দ্বারা উন্নত এবং 40 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত কৃতিত্ব পরীক্ষা। হ্যাঁ, আপনি যা শুনছেন তা ঠিক, York পরীক্ষা কেন্দ্র এই সব সুবিধা প্রদান করছে শুধুমাত্র আপনার জন্য। আমরা এসি ভবনের 94-20 গাই আর ব্রুয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক, রুম নম্বর 1G05 এ অবস্থিত।
2: The York College Mentoring Program is an initiative of the Division of Student Development. The program serves as a resource to assist first year, second year, and transfer students with their academic and social adjustments to the college. The mentoring program is open to all students regardless of their respective grade point average. Our mentees are paired with an academically successful third or fourth year student. In addition to partnering our mentees with student mentors, mentees have the option of choosing a mentor from our prestigious faculty and staff members within the campus community. As a mentee, you will be paired with a mentor with similar interests as your own. The benefits of becoming a mentee are as follows. You gain insight into YC campus life. You're able to meet new people and get involved. You receive encouragement and support to stay focused on your studies. You receive encouragement from your mentor to participate in networking events and internship. Now, the benefits of becoming a mentor are as follows. You gain leadership and service experience, establish positive relationships with other faculty, staff, and students. It's an opportunity to give back. For student mentors who are considering attending graduate school, your participation in the mentoring program may help bolster your application. A recommendation letter from the Associate Dean of Students may make your academic portfolio more competitive. Concerning our orientation, training, and support, mentors have the opportunity to develop their organizational and interpersonal skills by planning and participating in a variety of events. Training is provided every semester on a variety of leadership topics, such as diversity, communication, conflict resolution, goal setting, and wellness, to name a few. The YC Mentoring Program is an initiative of the Division of Student Development. The Office of Student Development is located within the Academic Core Building in room 2F01A. Associate Dean of Students Thomas Gibson serves as the program facilitator. I am Michelle Gibbs Spencer, and I am the program coordinator. For more information about the program or to sign up, you may visit room 2F01A, call 718-262-2337, or you can send an email to mgibbs@york.edu.
3: धोखाधड़ी चेतावनी, अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF A अनुरोध का उत्तर न दे. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.